कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बलिहारि गुर अपने द्योहड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार जे सौ चंदा उगव है

और बिन कोरे अंधार, गुरु बिन कोरे अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे, जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो, कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो, तत विचार यह मथुरा, जग तारण को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो, दर्शन नाम को मन अच्छे, ब्रह्म आयो है सगल थान रे, आहि परियो संत पाछे, प्रभ एह मनोरथ मेरा, कृपा निधान दयाल मोहि दीजै,

अमृत शाड भिखै भिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ, सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाट कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई, किरत कर्म के भी छुड़े कर कृपा मिलो राम, चार कुंड दे दिस प्रमे थक आए प्रभ की शाम, तेन दुदै ते बाहरी किते ना आवे काम, जल बिन शाख कुमलावती उपजै नाही दाम, हर नाना मिलिए साजने कत पाइए विश्राम, जित कर अर कंतना प्रगटई पठ नगर से ग्राम, सरब सिंगार तंबोल रस सण देई सब खाम, प्रभ स्वामी कंत विहुणिया मीत सजन सब जाम, नानक की बेनतिया कर कृपा दी जय नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल ताम, सो कहो।

कोई आण मिलावे माए असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आण मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हाँ तिन कै लागा पाए।

लियो प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाइया से विछुड़ कते न जाए। प्रभ विण दूजा को नहीं,

मटी का क्या तू पैस्वामी, मानस की गति ही मटी का क्या तू पैस्वामी, मानस की गति ही।

दया करो किछ मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे जियड़ा अगन बराबर तपै पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती प्रणवत नानक हुकम पछाणै सुख होवै दिन राती बेशुमार अथा अगणित वातोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै।

मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजी शब्द कन्हीरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, परेशान सुख मनाए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु वेटो, जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पंच दूत दवस कीते काल कंठ को मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कहे नानक दै सुख हुआ तित करि अनद वाजे, आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे, गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सत

साहिब जी ओ महाराज आप जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरद्वारा दुख निवारण साहिब विखे संग्रां दे शुभ दिहारे नू समर्पित अमृत विले दे गुरमत दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन गुरबाणी कथा विचार छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दियां सेवा संभाल करदियां हजूरी अंदर विचरदियां अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो जांदियां ने अखर वाधा घाटा ढुल चुक माफ करनी अगां तों सुमत बख्शनी दारे आई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर मंजूर करनिया यात्रावां सफल करनिया जी सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो जीव शके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी आप जी करो कृपा अमृतमई बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था सूझ बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्या।

गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा शाही दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे तान न्योटिया दी ओर सच्चे पिता धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर संग्रांद दे शुभ दिहाड़े नूं समर्पित दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर शब्द कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दे जाप होए बाणी पढ़दियां सेवा संभाल करदियां अनेक प्रकार दियां भुलां गलतियां हो जांदियां ने अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी गां तों समत बख्शनी दरियाई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर मंजूर करनियां यात्रावां सफल करनियां जी सतगुरु जी आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसादी देख सज के हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो जीव छके आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी आप जी करो कृपा अमृतमई बाणी विचों पावन हुकम बख्शो हुकम अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था सूझ बख्शनी सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्यावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया वही अकाल की तबै चलायो सब सिखन को हुक्म।

पाइया, करम मिले नाही ठाकर हाइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती परे तेरे पंडारा। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक सच सवार नहारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं, सचे नाम की लागे भूख। पुत भूखे खाए चलिहै दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचे नाए रहाओ, सचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई, जैसा मिलके आखण पाहे। वड्डा ना होवे घाट न जाए, ना ओह मरे ना होवे सोग। दिंदा रहे ना चूकै भोग, गुणे हो होर नाही कोए। ना को होआ ना को होए, जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात। जैना देना करके कीती रात, खसम विसारे ते कम जात। नानक नावे बायस नात, राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखां, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव, मोको राम नाम परगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत अमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलें त्रिपता सहें, मिल संगत गुण परगास। जिना हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखया लखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मान चितुमहे उदम। जा आहर हर जियो प्रया, सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर धरया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बहिता, कोए न किसकी तरया। सिर से रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। ऊड़े ऊड़ आवे सैकों सां, तिस पाछे बचरे छरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। सब निदान दस अष्ट सदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार। सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन, हर पुरख नरंजन। हर गम्मा गम्मा पारा, सब

ते आवे हैं तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर ते आव हो संतो जी, सब दुख विसार नहारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिने अवर ना जाना, तू पार ब्रह्मे अंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जैनो हर ते आया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी, तिन का पौ सब भगवासी, जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहि जपहि भयंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर किरिया खटकर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे बड़े अबर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुदे आपे भावे सोई वर्त जी, तू आपे करहें सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनम गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया वो सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संयोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर विखे जाने सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सर्व रड़े भैले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया,
पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देखत हैं डूबियले। मान एक न चेतस मूड मना, हर बिसर तेरे गुण गलया रहो। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणव नानक तिन की शरणा, जैन तू नही विसरया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते ना काम, मेल साध संगत पाजे केवल नाम। श्रम जाम लाख पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहौ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं। कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हद रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो। आभादे मोहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सबै रिनको आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारीहे। चुन चुन शतर हमारे मारीहे, आभाद मुझे उबरिए। मरण काल का त्रास निवरिए, हु जो सदा हमारे पच्छा। श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख ले ओ मोहे राखण हारे। साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपथरा। काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो। वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार हैं तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो। देव दैंत जक्षण पुजायो, आदि अंत एक अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो। शत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी दे कुंचर असथूला।
सब पर कृपा दृष्टि गर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जन्ने। जवद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तव देह अपारा। जब आ करख कर तुह कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम। रंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत पेदा, जाको पेव नवावत बेदा। ताको कृपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदाशिव, रंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनुपस रूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा। अंड जे रज से तज कीनी, उतपज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हव बैठा, कहो सिमड भयो शंकर अकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आजुगा स्रूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबारे असिख संघरो। दुष्ट जिदे उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता। जे आस्तु तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को इक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरेओ, ताके ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शव सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल वांसते ताहें उबारा। जिन नारे नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख दे ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो बारी। सर ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सवाए, बहुभेद कहें हम एक ना जान्यों।

दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुम्हारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुम्हारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तुहार रामकली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता बाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्दो तंगा बो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस ने सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेर कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको सेना महर के लागे कहे नानक तस कोआ तित कर अनाहद बाजी आनंद सुनहो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे
अनहद तुरे मुंदामणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जेको खावे जेको पुंचे तिसका होए उदारो एहे वस्त तजी नहें जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म।

ऐं वर श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए।

सब थाई हो सहाय दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हो सहाय।

पावे। चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसियारे आए। देग देग फते बिरद की पैज पंथ की जीता। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी।

अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरता मां दे जिन्ना

सरथक के पंचते संग टूटा कहो नानक तिनखनिए बंजा जिन कट मेरा हर प्रभ उठा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रव आवे चित्त जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट बले री रुत बिसें चसें कड़ियां पैरा तिथि बारी माहोआ सूरज एक रुत अनेक नाने करते के वेश दर्शन प्यासी दिन सिरात चितमो अनदनी खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संगमीत। महादिवस मूरत फले जिसको नदर करे नानक मंग दर्शदान कृपा करो हरे। महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंग दर्शदान कृपा करो हरे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। अश्वन प्रेम ओमाड़ा क्यों मिले हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मिलावे माए। असुन प्रेम ओ महड़ा क्यों मिले हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हो तिनका लागा पाए वेण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए आप त्याग विनती करहे लेहो प्रभु लड़ लाए।

प्रभु मिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए असु सुखी बसंदिया जिना मया हर राए जो हर कंत मिलाइया से बिछुड़ कतहें न जाए। प्रभु मिन दूजा को नहीं, नानक हर शरणाए असु सुखी बसंदिया जिना मया हर राए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

तेरी तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते सगल समग्री तुमरे सुतर तारी तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाही गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती

पया वंड सकया देख चलाई देख बाही देख के अंडठ किता तेना प्यारिया सचारिया दिक मई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए।

दान प्रसादान दान सरदान राम दान श्री अमृत सरजिया दे दर्शन स्नान चौंकिया चंडे बुंगे जोगो जोग अटाला धर्म का जयकार बोलो जे सिखा दा मननिया मत चेन मत पत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दी सदा सहाई दा तार जिया

दोहरा आ गया भैया काल की, सब सिखण को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान जो प्रभु को मिलोच है, राज करेगा खालसा। खुआर हो सब लेंगे, खुआर हो सब लेंगे।

दुर्त निवारण शब्द सरे, गावे गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे, गावे इंद्राद भगत प्रहलाद को, आत्म रस जिन जाने हो, कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणो, गावे जनकाद जुगत जोगेसर, हर रस पूरण सर्ब कला, गावे सनकाद साध सिदादिक, मुन जन गावे अचल चला, गावे गुण तोम अटल मंडल वे, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणो, गावे कपलाद आद जोगेसर, अपरंपर अवतार वरो, गावे जमदगन परस रामेसर, कर कुठार रग तेज हरयो, उदो अक्रूर बिदर गुण गावे, सर्वात्म जिन जाने ओ, कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन

ता गावे गुण शेष सहस जे बारस आद अंत लिव लाग तुणा गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानयो कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जो

श्रेष्ठ सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गा वह सनकाद आद जनकाद जुग है लग धन धन गुर धन जन्म सके अथ भलो जग पातालपुरी जयकार धुन कब जन कल वखाण्यो हर नाम।

द्वापर कृष्ण मुरार, कंस के रितार्थ कियो उग्र सैन को राज, अभय भगत है जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर, अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फुरमायो। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन, भगत बेण गुण रवे सहज आत्म रंग माणे, जोग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ

0: व्यास जिन वेद व्याकरण विचारै ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण जम सा गुण निर्गुण समझाण्यो जप गल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो गुण गावे नवनाथ धन गुर साच समायो मां दाता गुण रवै जेन चक्रवे कहायो गुण गावे बलराओ सपत पताल बसंतो परथर गुण उचरे सदा गुर संग रहंतो दूरबा पुरूरो अंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सुजस नानक गुर घट घट सहज समायो श्री गुरु साहेब सब ऊपर करि कृपा सतयुग दिन ध्रुपर श्री प्रहलाद भगत उदरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई सादिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खे वट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद पर पाइए गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी तिन लैना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चोजुग गुर सेवा कर फल लहियं बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहिं पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखन पन्न सतगुर गुर सेव अलख गत जांकी श्री रामदास तारन तरनं
1: चित

जो तुद से वह तिन पाओ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुन गाहे। जो दिसै सु तेरा रूप, गुण निधान गोविंद

जिम जपिया बलिहार जिसके संग तेरे संसार कहो नानक प्रबल चपूर संत जन की बंसो तू

जिन जपया तिस को बलहार तिस के संग परे संसार कहो नानक प्रभु लोटापुर संत जना की वंश तूर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल साहिब जमाल साहिब बरकत सर्ब सांझी बालता दे रह पर चबर और तख्त दे मालक बेअंत भगतां दी टेक दसां पातशाहियां दी जागदी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीआं दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जिया दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, जो सतगुरां ने सानू पावन हुक्म दी दात बख्शी है। सो पावन हुक्म तिलंग राग दे अंदर पंजवें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जीआं दा शब्द है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दे अंदर 723 अते 724 अंग दे उपर सवाईमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राहीं किहड़ियां नदरे नायतां दे नाल निवाजना करदे ने, आओ प्रेम सतकार वैराग दे विच भिज के सरवण करना करिए जी। तिलंग घर दूजा महला पंजवा तुद बिन दूजा नाही कोए तू करतार करहें सो होए तेरा जोर तेरी मन टेक सदा सदा जप नानक एक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुर प्रसाद आस महला पहला वास लोका नास लोकी महल पहले के लिखे कुंडे असराज के तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने।